मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन, चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

0: भा
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और सिमरन देखो, अपने श्रोताओं को हम ये बता दें कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 KHz पर।
1: और प्रतिभा देखो, घर आंगन का जब शो शुरू होता है तो हमें याद आता है कि देखो आज फिर हमने अपने दोस्तों अपने श्रोताओं से मिलना है, और मिलने की जब बात होती है तो बहुत दिनों के बाद मिलना बहुत ही अच्छा लगता है किसी से, और ये मुलाकातें इतनी अच्छी लगती है ना कि मन करता है हम हमेशा मिलते ही रहे अपने दोस्तों।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सिमरन तुमने। देखो सही मानों में घर आंगन जो कार्यक्रम है वो उस कड़ी की तरह है जो हमें हमारे श्रोताओं के साथ हमें जोड़कर रखा है, हमें बांधे हुए है। ये कड़ी जो है वो हर दिन हर प्रोग्राम के साथ
1: और मजबूत
0: होती जाती है।
1: मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि और मजबूत के साथ साथ ये भी लगता है कि हमारा और हमारे दोस्तों के साथ जो रिश्ता है बहुत ही पुराना है, और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम ऐसी कामना करते हैं हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि आवाज से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता और उनके मैसेजेस से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता, दोनों से हम ये चाहते हैं कि रिश्ता यूं ही चलता रहे हमेशा बरकरार रहे।
0: हाँ देखो ये दो तरफा संवाद है, हम जहाँ से संवाद आवाज के जरिए होता है और वहाँ से संवाद जो होता है वो प्रतिक्रियाओं के जरिए होता है।
1: और प्रतिभा देखो, कई बार जब वो मिलने की बात जब मैं करती हूँ, हम किसी दोस्त से भी बीच में दोस्त से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, तो ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहती है कि हम हमेशा अपने दोस्तों से मिलते रहें, याद करते हैं। और देखो मिलने से क्या होता है कि मन भी बहुत खुश होता है और जिंदगी में जो तनाव है आपका स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाता है, तो इससे एक साथ जुड़े रहिए, जुड़ने से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहता है और अच्छा भी लगता है, और आप अपने आप को एक रिलीफ जैसे कहते हैं ना, सुकून भरी जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं।
0: भाई देखो जैसे सिमरन हमें इंतजार रहता है ना कि प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे ही हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो श्रोता हैं उनको भी बहुत मतलब उससे इंतजार रहता है हमारा कि कार्यक्रम घर आंगन शुरू होने वाला है, और वो अपना रेडियो सेट अपना मोबाइल फोन ऑन कर बैठ जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: हाँ और देखो हम अब आगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ अपने दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, तो सबसे पहले एक खूबसूरत सा गीत हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं।
0: बिल्कुल

0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी लवर्स।
1: और देखो आज 13 जून है, तो आज 13 जून को कोई खास बात भी है, खास दिन भी है।
0: आज खास दिन भी है क्योंकि आज के दिन मनाया जाता है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है ना सिमरन, वो पीड़ित लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके 13 जून को इस दिवस के रूप में स्थापित किया था और इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था।
0: और देखो हर वर्ष जो ये जो दिन है वो थीम के तहत मनाया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो 2026 है उसका विषय है अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा के रंगों का उत्सव मनाना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक ये अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नामक जो है रंग द्रव्य कम या नहीं बनता और इसका असर त्वचा, बालों और आंखों के रंग पर पड़ सकता है। कई लोगों को दृष्टि से जुड़ी चुनौतियां भी हो सकती हैं।
0: और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्बिनिज्म जो है वो कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी व्यक्ति की क्षमता या प्रतिभा को सीमित करता है। सही जानकारी, स्वास्थ्य देखभाल, आंखों की सुरक्षा और सामाजिक सहयोग से एल्बिनिज्म वाले लोग शिक्षा, खेल, कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये जो दिवस है वो जागरूकता दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें भेदभाव नहीं बल्कि सम्मान और समान अवसर को बढ़ावा देना है।
0: और एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखने का ये संदेश देता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए ये दिन प्रोत्साहित भी करता है।
1: बिल्कुल। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार में की आवाज में गीत, फिल्म है थोड़ी सी देर।

0: देखो, योग जीवन जीने की और जीवन को साधने की एक ऐसी कला है जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है और उन्होंने अष्टांग योग को सर्वोपरि बताया है।
1: बिल्कुल
0: अष्टांग योग एक गतिशील और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण योग शैली
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: है ना?
1: और देखो, योग की जब बात की जाती है तो मुझे याद आता है कि योग करने के बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं, और योग करना भी देखो बहुत जरूरी है जीवन में। ये नहीं कि हम सो रहे हैं और हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। पर योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत।
0: बिल्कुल। और देखो, हम आज अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अष्टांग योग का अर्थ है योग के 8 अंग। ये योग की

0: पद्धति है जिसका उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं बल्कि मन, व्यवहार और जीवन में संतुलन लाना भी है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो अष्टांग योग के 8 नियम है, अंग हैं, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना।
1: और इन नियमों के द्वारा व्यक्ति जीवन में सही व्यवहार, अनुशासन सीखता है, साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ सांस पर भी नियंत्रण का मार्ग सिखाता है ये योग।
0: बिल्कुल। और देखो अष्टांग योग इंद्रियों के नियंत्रण में भी सहायक है। मन को ध्यान द्वारा स्थिर कर व्यक्ति एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है और व्यक्ति चेतना की उस अवस्था में पहुंचता है जिसके द्वारा शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं।
1: और देखो प्रतिभा, देखो तनाव और बेचैनी कम करने में मदद करता है योग, और अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है, ध्यान और एकाग्रता बेहतर कर स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में सहायक होता है और साथ में रिश्तों और व्यवहार में सकारात्मक भी लाता है।
0: बिल्कुल। और देखो तो अष्टांग योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है जो स्वस्थ तन और संतुलित मन और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है।

0: और प्रतिभा देखो अभी तुमने योग की बात की, योग से मुझे एक चीज याद आ रही है, योग करने के बाद स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद आप नींद कितनी अच्छी लेते हैं, गहरी नींद और अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य की निशानी है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन नींद आने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद लेना बेहतर है, बेहतर है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है। लोग काम, तनाव, सोशल मीडिया पर देर रात तक मोबाइल चलाने की वजह से अपनी नींद को नजरअंदाज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और देखो मतलब लोग ये जानते भी हैं कि नींद की कमी का सबसे गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, इससे एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही कमजोर पड़ जाती हैं।
0: और एक रिसर्च के अनुसार नींद के दौरान दिमाग दिन भर यादों के प्रोसेस करता रहता है और उन्हें लंबे समय तक याद रखने लायक बनाता है और आपकी मेमोरी कमजोर होने लगती है।
1: और देखो नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और नींद की कमी से डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।
0: और जब दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो उसकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति सही और गलत में फर्क करने में भी मुश्किल हो जाती है उसको।
1: बिल्कुल ठीक कह रही है सिमरन। देखो एक रात की जो खराब नींद जो है ना, वो क्या करती है कि दिमाग में टाऊ प्रोटीन का स्तर बढ़ा सकती है। यानी नींद की कमी केवल थकान ही नहीं बल्कि मस्तिष्क रोगों का कारण भी बन सकती है।
0: और देखो अच्छी नींद के लिए कुछ आसान से टिप्स भी होते हैं। रोज एक तय समय पर सोए उठे, सोने से एक घंटे पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए।
1: और देखो इनसे तो दूरी बनाए बनाए साथ ही साथ कैफीन या निकोटीन का सेवन जो है वो रात में बिल्कुल ना करें और कमरे का वातावरण शांत और आरामदायक रखें।
0: और सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग सा म्यूजिक और मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ना। और देखो नींद सिर्फ जो है शरीर को आराम देने का जरिया नहीं है बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है।
0: और जो लोग रोज 7 और 8 घंटे की नींद लेते हैं वो ज्यादा फोकस्ड, खुश और ऊर्जावान रहते हैं। और जब अच्छी नींद आप लेंगे तो अच्छे सपने भी आएंगे, तो अच्छा भी लगेगा आपको। तो अच्छी नींद भी लीजिए और अच्छे सपने भी देखिए। सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज में की फिल्म है अखियों की जरूरत।

0: प्रतिभा देखो, अब कुछ बात करते हैं कुछ व्यवसाय की, छोटे से लघु उद्योग की, जो हम महिलाओं के लिए स्पेशल खास तौर पर लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटे लेकिन लाभदायक व्यवसाय की, जिसमें हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। हमारा विषय है आज का सुगंधित मोमबत्ती निर्माण स्वयं सहायता समूह।
1: और देखो, आज के समय में सुगंधित मोमबत्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है और घरों की सजावट, पूजा पाठ, त्योहारों, उपहारों और विभिन्न आयोजनों में इनका व्यापक उपयोग होता है। कम लागत में शुरू होने वाला यह व्यवसाय स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार और आय का अच्छा स्रोत भी बन रहा है।
0: और देखो, स्वयं सहायता समूह और आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।
1: और देखो, जब कुछ महिलाएं मिलकर नियमित बचत करती हैं और सामूहिक रूप से कोई व्यवसाय शुरू करती हैं, तो उनके लिए सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: और सुगंधित मोमबत्ती निर्माण ऐसा ही एक व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और सीमित संसाधनों में साथ आप शुरू भी कर सकते हैं।
1: तो अपने श्रोताओं को बता दें, जैसे सभी जानते हैं कि सुगंधित मोमबत्ती क्या है। भाई, सुगंधित मोमबत्ती ऐसी मोमबत्ती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की खुशबूदार सुगंध मिलाई जाती है, और जब ये मोमबत्ती जलती है तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण को महका
0: और बहुत ही अच्छी लगती है उनकी खुशबुएं। जैसे कि आज बाजार में आप लेवेंडर, गुलाब, चमेली, चंदन, वनीला, लेमन ग्रास और कई अन्य सुगंधों वाली मोमबत्तियां उपलब्ध हैं, वो ले सकते हैं आप चाहे।
1: और देखो, इनकी जो मांग है, विशेष रूप से त्योहारों, विवाह समारोह, होटल उद्योग, स्पा सेंटर और उपहार बाजार में अधिक रहती है।
0: और एक बात, मोमबत्ती निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है, अगर सुगंधित मोमबत्ती बनाने के लिए अगर आपने बनानी है या सीखनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत की हैं, वो हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को।
1: वो है देखो, वो है पैराफिन वैक्स या सोया वैक्स, मोमबत्ती की बाती, सुगंधित तेल, रंग, सांचे या कांच के जार, वैक्स पिघालने के लिए बर्तन और पैकेजिंग सामग्री। और इन सभी सामग्रियों को स्थानीय बाजार या ऑनलाइन माध्यम से आप आसानी से खरीद सकते हैं।
0: और इसको मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले वैक्स को गर्म करके पिघलाया जाता है, इसके बाद उसमें मनचाही सुगंध और रंग मिलाया जाता है, फिर सांचे या जार में पहले से बाती लगाकर तैयार मिश्रण को सावधानी पूर्वक डाला जाता है और कुछ घंटों तक ठंडा होने के बाद मोमबत्ती को पूरी तरह से उसमें, वो जो सांचे में डालते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
1: और देखो, इसके तैयार होने के बाद इसके जो आकर्षक पैकेजिंग होती है, उसको करके उसे बाजार में बिक्री के लिए इसको भेजा जा सकता है, और रोजगार और आय के अवसर। सुगंधित मोमबत्ती निर्माण जो है, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे घर में भी संचालित किया जा सकता है।
0: और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर उत्पादन बढ़ा सकती हैं और बड़े ऑर्डर भी पूरे कर सकती हैं।
1: स्थानीय बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री आराम से की जा सकती है।
0: और देखो, वैसे देखते हैं तो त्योहारों के मौसम में भी इसकी कई जो मांग है, कई गुना बढ़ जाती है, जिसमें अच्छी आय भी प्राप्त हो सकती है अगर हम ये काम करें तो, है ना।

0: कोई भी अगर इस काम को करना चाहे तो।
1: और देखो डिजिटल युग में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, आज इतने अच्छे अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं छोटे उद्यमों के लिए जो उनके लिए नए रोज इन नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
0: और स्वयं सहायता समूह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और कई तरह से डिजिटल भुगतान की सुविधा के कारोबार को और भी आसान बनाया जा सकता है, है ना?
1: हाँ बिल्कुल। देखो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम जो है ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। सुगंधित मोमबत्तियों का जो निर्माण किया जा रहा है क्योंकि ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।
0: और जब महिलाएं अपनी मेहनत से आय अर्जित करती हैं तो परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है, वे अपने बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य परिवार की आर्थिक जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देने लगती हैं।
1: और सही कहा जाए शिमरन तो यही आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण मतलब सशक्तिकरण वाली नारी की जो है वो वास्तविक पहचान है।
0: और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके गांव या क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह सक्रिय है तो आप उससे जुड़कर कई प्रकार के लघु उद्योग की शुरुआत भी कर सकती हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव भी बनती है।
1: और देखो ये जो सामूहिक प्रयास मेहनत और सही दिशा में काम करके महिलाएं आर्थिक सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं।
0: और देखो जैसे सुगंधित मोमबत्ती निर्माण से लघु उद्योग हैं तो ये साबित करते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भरता भी हासिल की जा सकती है।
1: देखो है ना? जो ये जो समूह होते हैं स्वयं सहायता समूह महिलाओं को न केवल आर्थिक मजबूती दे रहे हैं बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिला रहे हैं।

0: रामा हरे कृष्णा। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: प्रतिमा, मैं ये सोच रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा मन घर में नहीं लगता जब हम अकेले होते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे अकेले होते हैं जिनका मन घर में नहीं लगता, और अकेलेपन को मिटाने के लिए सबसे अच्छा आपका जो अगर साथी है, सबसे अच्छा अगर आपका साथ है, वो प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। उनके साथ आपका मन लग सकता है और आपका जीवन भी सुकून भरा बीत सकता है, और आप खुशी महसूस ऐसी करेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक कहा सिमरन तुमने,
1: है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे पालतू हमारे जो जानवर हैं, हमारे पशु पक्षी के साथ अगर समय बिताना, जिसे हम पेट थेरेपी या एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी कहा जाता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर खुशी प्रदान करना है, तो पशु पक्षी तनाव कम करने वाले हार्मोन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे फील गुड रसायनों को बढ़ावा भी देते।
0: बिल्कुल तुमने ठीक है। देखो जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, इनके साथ जब हम रहते हैं तो बहुत हमें, जैसा हमने भी बात की कि बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि जो पालतू पशु पक्षी है अगर उनको गले लगाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, तो इससे तनाव और एंग्जाइटी तुरंत कम हो जाती है। और अपने आप जानवर से, अपने पक्षी से अगर आप, क्योंकि अमूमन हम बात भी करते हैं उनसे, है ना, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो गाना भी गाते हैं, तो वो मानसिक तनाव को दूर करता है और हमारे अकेलेपन की भावना को कम करता है।
1: और देखो जैसे साथ में खेले, उनके साथ जैसे ना टग ऑफ वॉर या बॉल फेंकने जैसे खेल खेलें, जिसमें एंड्रोफिन बढ़ता है और मूड भी बेहतर हो जाता है। रोजाना सैर पर ले जाएं अपने पशु पक्षियों को घुमाने के लिए, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मूड को भी बेहतर बनाएंगे।
0: बिल्कुल। और देखो घर में जब ये हमारे जो पालतू जानवर रहते हैं, तो उनके साथ दौड़ने भागने खेलने जैसी कुछ हम उनके लिए एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में भी काफी हरकत होती है। हम उनके साथ भागते दौड़ते हैं, तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
1: और जैसे खाना खिलाने, टहलाने, जैसे खेलने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। ये ना हो कि कई बार होता है ना कि उसको स्वस्थ रखता है, अगर आपके समय निश्चित हो तो आपके जो पशु पक्षी वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए आपको भी एक अनुशासन रहित काम और दिनचर्या रखनी पड़ती है।
0: बिल्कुल। देखो मतलब आप अपने जो जानवर है, आपका जो घर में पालतू जानवर है, उसके साथ आप एक एक रूटीन के साथ काम करते हैं, तो उसकी रूटीन के साथ, उस अनुशासन के साथ आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है, वो भी अनुशासित हो जाती है ना।
1: बिल्कुल।
0: और शोध के अनुसार ये भी पता चला है कि 10 मिनट तक किसी भी पालतू जानवर के साथ समय बिताने से दर्द और तनाव में काफी कमी आ जाती है।
1: कितनी अच्छी बात है
0: ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है सिमरन कि इतने ये वफादार साथी होते हैं ना, जो सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
1: और पालतू जानवर हमें अधिक दयालु और संवेदनशील बनाते हैं, जिससे इमोशनल जो इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है, और खास तौर पर अच्छी देखभाल, भोजन, स्वास्थ्य, प्यार करना, उनका जो है ये उद्देश्य को बढ़ाता है, भावना देता है हमें, और खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पशु पक्षियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल। और देखो अगर किसी ने अपने घर में पालतू पशु पक्षी नहीं भी रखा हुआ है, तो आप अपने जो सराउंडिंग में, आपके सोशल एनवायरमेंट में कुछ ऐसे पशु पक्षी

0: देखो सिमरन, आज का जो दौर है वो तकनीक और विज्ञान का है और जिंदगी देखो कितनी आसान हो गई है, लेकिन हमने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के चक्कर में है ना किताबों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और किताबों के पन्नों से आती खुशबू, मुड़े हुए पन्ने और किताबों के बीच रखे सूखे फूल, बुक मार्क्स कहीं ना कहीं अपने वजूद को समेटे घर के किसी कोने में शेल्फ में पड़े, यानी कि किताबें पढ़ने की आदत छूट गई है।
1: लेकिन किताबें सोच को गहराई देती हैं, कल्पना शक्ति को उड़ान देती हैं, पंख देती हैं और किताबें एकाग्रता, हमारी भाषा शैली, सोच क्षमता विकसित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: बिल्कुल, देखो लोगों ने किताबों की ओर वापसी शुरू कर दी है। सही मायनों में किताबें इंसान की शांत और वफादार दोस्त होती हैं। और देखो साथ ही साथ किताबें मानसिक और व्यक्तिगत विकास की कुंजी भी हैं, जो व्यक्ति को गहरी और सुदृढ़ पहचान देती है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अगर आप किताबें पढ़ने की आदत से आगे आ गए हैं, वो आदत छूट गई है, तो आप दोबारा से इन किताबों को अपना दोस्त बना लें। शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन परिणाम जो होगा वो सकारात्मक और काफी गहरा होगा, है ना। एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा और समय का बेहतर उपयोग भी होगा।

0: और प्रतिभा देखो अब घड़ी इशारा कर रही कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो हम अपने श्रोताओं से अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे घर आंगन के शो में, और इसी के साथ लेते हैं अनुमति
1: मुझे यानी प्रतिभा को
0: और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स

0: जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a 6-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Mr. Modi will also go to Slovakia for a 2-day visit. He noted that this historic visit builds on the strong momentum in the bilateral relationship of both the countries. Prime Minister Modi will meet Slovakian President Pellegrini and Prime Minister Fico in Bratislava. Prime Minister Modi says India's youth are making their mark across various sectors from science and technology to manufacturing, space, semiconductors and drones. In a social media post, Mr. Modi emphasized that India is among the world's leading startup destinations and many of these success stories are being scripted Yuva Shakti, and that too from smaller towns and villages. He also lauded the youth for bringing immense glory to the nation in the field of sports and for contributing to various areas that will shape the future of India and the world. President Draupadi Murmu today attended the passing out parade at the Indian Military Academy in Dehradun, Uttarakhand. This year's passing out parade was historic as for the first time women cadets passed out alongside gentlemen cadets from the academy. Addressing the grand ceremony, President Murmu said she is especially delighted to see 9 women cadets. She further said it is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development.
2: I am especially delighted to see

श्रोताओं, फिल्म धड़कन को 11 अगस्त साल 2000 में विश्व स्तर पर 250 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। ये एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई और वैश्विक बाजारों में 26 करोड़ की कमाई

श्रोताओं, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू, ये हमारे साथ जुड़े हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। गंजूडवारा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता समशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान। श्रोताओं, अगर बात करें फिल्म धड़कन के संगीत की तो इसे संगीत नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया है और बोल समीर के हैं। इस फिल्म के सारे गीत सुपरहिट साबित हुए और साल 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में अलका याग्निक को गीत दिल ने ये कहा है दिल से के लिए पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा साल 2001 में सुनील शेट्टी ने भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार जीता और इस फिल्म के ज्यादातर किरदार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड रहे।

वक्त हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता।

गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। गुरमीत सिंह मीता ये हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एक्सटेंशन से, साथ में अशोक कुमार सहगल और ये जुड़े हमारे साथ शालीमार बाग से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।

शिल्पा शेट्टी और देव यानी सुनील शेट्टी के सच्चे प्रेम से शुरू होती है, लेकिन अंजलि का अमीर परिवार उन दोनों की शादी के खिलाफ होते हैं और परिवार के दबाव में आकर अंजलि देव से अलग हो जाती है और एक अमीर दयालु व्यक्ति राम यानी अक्षय कुमार से शादी कर लेती है। राम अंजलि को बहुत प्यार करता है और उसे अपनी पुरानी यादों से बाहर निकालने का पूरा मौका देता है। कुछ सालों बाद जब अंजलि अपने सुखी वैवाहिक जीवन में राम रम जाती है, तब देव एक सफल व्यवसायी बनकर वापस लौटता है और अंजलि को वापस पाने की कोशिश करता है। कहानी के अंत में अंजलि अपने पति राम और उनके परिवार को चुनती है और देव भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। श्रोताओं, धड़कन फिल्म अपनी मजबूत प्रेम कहानी, दिल को छू लेने वाले संगीत और त्याग की भावनाओं के कारण बहुत भावनात्मक है। फिल्म प्रेम, कर्तव्य और क्षमा का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।

श्रोताओं, धड़कन एक गहन प्रेम कहानी है और निर्देशक धर्मेश दर्शन ने इसे बखूबी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस फिल्म के द्वारा धर्मेश दर्शन कई जगहों पर दिल को छू लेने में कामयाब रहे हैं। शुरुआती दृश्यों में विवाह गीत का सीक्वेंस, उससे पहले शर्मिला टैगोर के दृश्य और दूसरे भाग में सुनील शेट्टी के हिस्से का अभिनय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्देशक अपने काम में माहिर रहे, जिस कारण ये फिल्म हिट साबित हुई।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे लई रवाना होए। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दे नौजवान विज्ञान टेक्नोलॉजी पुलाड निर्माण ते ड्रोन वर्गे खेतरां च शानदार प्राप्तियां कर रहे ने। असम च अज सवेरे भारतीय हवाई सेना दा एक AN-32 जहाज हादसाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज उत्तराखंड दे देहरादून च भारतीय सेना अकादमी विखे पासिंग आउट परेड च शिरकत की। कहा पहली बार महिला कैडटां दा पास आउट होना इतिहासक है। अते पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वालों नवी दिल्ली च उपराष्ट्रपति ते केंद्रीय मंत्रियां नाल कई महत्वपूर्ण मीटिंगां। शासन, सभ्याचार, खेडां ते कानूनी बुनियादी ढांचे नाल संबंधित मामलियां ते कीती चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस ते स्लोवाकिया दे 6 दिना दौरे लई रवाना हो गए ने। प्रधानमंत्री अज शाम फ्रांस दे नीस पहुंचणगे। ए दौरा यूरोपियन यूनियन नाल अपनी व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं अगे वधाउण प्रति भारत दी वचनबद्धता नूं वी दोहराएगा। ए उन्हां दे फ्रांस ते स्लोवाकिया दे दौरे दी शुरुआत होवेगी। फ्रांस विच प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन च हिस्सा लैणगे अते दोवां देशां दरम्यान रणनीतिक सहयोग वधाउण लई दुवल्ली गल्लबात करनगे। अपने रवानगी समय बयान च श्री मोदी ने कहा कि फ्रांस रणनीतिक दृष्टिकोण तों भारत लई खास तौर ते महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरे दा मुख उद्देश्य भारत ते फ्रांस दरम्यान आर्थिक अते सभ्याचारक संबंधां नूं मजबूत करना है। श्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल इंडिया इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समागम भारतीय स्टार्टअप्स नूं दुनिया दे नाल जोड़ेगा। श्री मोदी कल नीस तों स्लोवाकिया दे 2 दिना दौरे लई रवाना होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इतिहासक दौरा दोवां मुल्कां दरम्यान संबंधां नूं वधाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा च स्लोवाकिया दे राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ते प्रधानमंत्री फिको नाल मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यूरोपियन यूनियन नाल भारत की रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करेगा, जिसका स्लोवाकिया च इक महत्वपूर्ण मैंबर है। स्लोवाकिया तो बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाणगे, जिथे ओ इस महीने की 16-17 तारीख नूं G7 सम्मेलन च शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 विच भारत की मौजूदगी भारत के वधदे आलमी प्रभाव विच इसते भाईवालां दे विश्वास नूं प्रगटाउंदी है। दौरे की समाप्ति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी 18 जून नूं पैरिस जाणगे। उन्हां भरोसा प्रगटाया कि यह दौरे यूरोप अते G7 दोवां नाल भारत के डूंघे संबंधां नूं होर मजबूत करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के नौजवान विज्ञान टेक्नोलॉजी पुलाड निर्माण सैमीकंडक्टर अते ड्रोन वर्गे खेतरां च शानदार प्राप्तियां कर रहे ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि भारत अज दुनिया के मोहरी स्टार्टअप हब विचों एक है ते छोटे कस्बियां ते पिंडां दे नौजवानां ने इस दी सफलता विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने खेडां विच नौजवानां दे शानदार प्रदर्शन की शलाघा करदिआं कहा कि भारतीय अथलीटां ने

0: ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 929 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 80% ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਮ ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਕ AN-32 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿਖੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवियत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस में एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर क्यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्ट्रेटेजिक विजन में फ्रांस का खास मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह भारत इनोवेटिव का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि ये तारीखी तकरीब भारत फ्रांस की इख्तिरा के साल के पस मंजर में मुनक्किद हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे भारत के सबसे ज्यादा पुरअज़्म स्टार्टअप्स का आलमी सरमायाकारी से राबता कायम होगा और भारत के आला तालीम के इको निज़ाम से उभरने वाली इख्तिराआत में बड़े पैमाने पर रफ्तार पैदा होगी। इस तकरीब के बाद कल वजीर आजम 2 रोजा दौरे के लिए नीस से स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इस तारीखी दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में हुई पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज रहेगी। वजीर आजम ब्रैटिस्लावा में स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी ने बताया कि इस दौरे से भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तेजी आएगी और स्लोवाकिया ईयू का एक अहम रुकन है। स्लोवाकिया के अपने दौरे के बाद जनाब मोदी इवियान फ्रांस जाएंगे, जहां वो इस महीने की 16 और 17 तारीख को G7 समिट में शिरकत करेंगे। बिलाखिर वजीर आजम का दौरा 18 जून को पेरिस में अख्तिताम पजीर होगा, जहां वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवा टेक 2026 में शिरकत करेंगे। अक्षित की रिपोर्ट के साथ मैं असगर अली।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दो मुल्कों के दौरे के तहत आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 10:30 बजे वजीर आजम के वहां पहुंचने का इम्कान है। फ्रांस के दौरे के दौरान वजीर आजम एवियो में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक तआवुन को मुस्तहकम करने के मकसद से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। बाद में वो स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ अहम शोबों में फरोग के ताल्लुक से वहां के कायदीन से मुजाकरात करेंगे। वजीर आजम की आमद से कबल भारतीय बिरादरी, स्टार्टअप्स के बानियों और कारोबारी अफराद ने इस दौरे पर गर्मजोशी का इजहार किया है। तवक्को की जा रही है कि इस दौरे से भारत और यूरोप के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वसीतर तैयारियां की गई हैं और भारतीय बिरादरी उनसे मिलने की मुंतजर है।
1: भारत और फ्रांस के दरमियान अवामी सतह के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तकरीबन 10,000 भारतीय तलबा फ्रांस में ज़ेर तालीम हैं, जिसे 2030 तक 30,000 तक पहुंचाने का हदफ है। फ्रांस ने भारतीय नौजवानों के लिए मुतअद्दिद नए मौके फराहम किए हैं, जिनमें 5 साल स्कैंगन वीजा और तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट और 18 से 35 साल की उम्र के नौजवानों के लिए यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शामिल है। आकाशवाणी से बात करते हुए फ्रांस में भारत के सफीर जनाब संजीव संगला ने कहा कि वजीर आजम का यह दौरा दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की फौज ने आज अपने 481 नए अफसरों का खैर मकदम किया, जिन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में वाकई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी तरबियत पूरी की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 158वीं पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इन अफसरों ने अपनी सख्त मेहनत और जांफिशानी के साथ फौजी तरबियत कामयाबी के साथ पूरी की है। इन अफसरों ने फौजी जज्बे, लगन और डिसिप्लिन की मिसाल पेश करते हुए परेड में हिस्सा लिया। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी नौयत की परेड थी, क्योंकि इसमें पहली बार मर्द कैडेटों के साथ साथ ख्वातीन कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। इस शानदार तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि वो 9 खातून कैडेट्स को देखकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि ये न सिर्फ भारत की दिफाई अफवाज की तारीख में एक अहम संग मील है, बल्कि ख्वातीन की जेर क्यादत भारत की तरक्की के सफर में एक बाइस फैजान मिसाल भी है।
2: आई एम स्पेशली डिलाइटेड टू सी 9 वुमेन कैडेट्स। This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फजाइया में नए भर्ती होने वाले अफसरों पर जोर दिया है कि वो बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में सैटेलाइट और ड्रोन समेत नित नई उभरने वाली जंगी टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करें। उन्होंने ये बात हैदराबाद में फजाइया की एकेडमी में 217वीं मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड में शामिल अफसरों से खिताब करते हुए कही।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेस में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
0: भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है, जिनमें 3 भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। उमूर खारजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लियाकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लियाकी फ्रीडम बहरी जहाज के मास्टर से बात की है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। एमईए के हकाइक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह

0: 24-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the U.S. over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त, और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे।

0: एक रिपोर्ट।
1: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमएस स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर, कोरेजस, डिसीजन मेकर एंड एथिकल लीडर।
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च

0: स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की

0: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप
2: खबरें अंतर आकाशवाणी दिल्ली का ना स्नापिन उत्पिन मीडियम में कदम आकाशवाणी कारगिल बजांग मजद बल्ती प्रोग्राम अर्गस्कत प्रोग्राम सिरता से प्रचुखन पुन

सामीन आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नष्ट की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर अपनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे उत्तर प्रदेश के लोकगीत। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें निश्चित की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो समय यह था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवीत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस में एवियो में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर क्यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। और भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्ट्रेटेजिक विजन में फ्रांस का खास मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर खास तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 मुल्कों के दौरे के तहत आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 10:30 बजे वजीर आजम के वहां पहुंचने का इम्कान है। फ्रांस के दौरे के दौरान वजीर आजम एवियो में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक तआवुन को मुस्तहकम करने के मकसद से 2 तरफा मुलाकात भी करेंगे। बाद में वो स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहाँ वो मुख्तलिफ अहम शोबों में फरोग के ताल्लुक से वहाँ के कायदे से मुजाकरात करेंगे। वजीर आजम की आमद से कबल भारतीय बिरादरी, स्टार्टअप्स के बानियों और कारोबारी अफराद ने इस दौरे पर गर्मजोशी का इजहार किया है। तवक्को की जा रही है कि इस दौरे से भारत और यूरोप के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, खला, सेमीकंडक्टर और ड्रोन्स तक मुख्तलिफ शोबों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के तेजी से बढ़ते हुए स्टार्टअप से मुतालिक मकामात में से एक है और युवा शक्ति कामयाबी की कहानियां लिख रही है जिनमें छोटे गांव और कस्बों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों का बड़ा रोल है। वजीर आजम ने खेलों के शोबे में मुल्क का नाम रोशन करने और भारत नीज दुनिया के मुस्तकबिल को तश्कील देने वाले मुख्तलिफ शोबों में अहम रोल अदा करने पर भी नौजवानों की तारीफ की। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मुतअद्दिद बैनुल अक्वामी मुकाबलों में मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों ने मुसलसल कौमी फख्र को बढ़ाया है। भारत की फौज ने आज अपने 481 नए अफसरों का खैर मकदम किया जिन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में वाकई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी तरबियत पूरी की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 158वीं पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इन अफसरों ने अपनी सख्त मेहनत और जांफिशानी के साथ फौजी तरबियत कामयाबी के साथ पूरी की है। इन अफसरों ने फौजी जज्बे, लगन और डिसिप्लिन की मिसाल पेश करते हुए परेड में हिस्सा लिया। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी नौयत की परेड थी क्योंकि इसमें पहली बार मर्द कैडेटों के साथ साथ

0: ख्याल किया गया। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवीत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस में एवियो में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातीन कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर क्यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीका की बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। और भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम धवन के लिखे कुछ नगमे जिनका आज शोम पैदाइश है। प्रेम धवन एक नाम नहीं बल्कि एक शख्सियत थी। कई सिफात आप में शामिल थी। आप न सिर्फ नगमा निगार थे बल्कि मौसीकार भी थे, कोरियोग्राफर भी थे और साथ ही साथ एक्टर भी थे। आप आज ही के दिन 1923 को अम्बाला में पैदा हुए थे। फिर अपनी पढ़ाई के दौरान वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गए। 1946 में बम्बई गए, वहां इप्टा से मुंसलिक हो गए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में काम करना शुरू किया और एक पहली फिल्म उनकी आई थी धरती के लाल। उसी फिल्म से उन्हें शोहरत मिलनी शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में दी, आराम, तराना, शोला और शबनम, पूरब और पश्चिम में एक फूल दो माली, काबली वाला और इस तरह उनकी फिल्मों की जो है एक लंबी कतार लगती चली गई जिन्होंने न सिर्फ उन्हें शोहरत बख्शी बल्कि उनको कामयाबी के रास्ते पर चला दिया।

शोला और शबनम फिल्म के नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था खय्याम ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डी की आवाज में सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है रवि ने।

साल फिल्म का नाम आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था रवि ने। और समझने इसके प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सलील चौधरी की मौसीकी सजा ये नगमा फिल्म है काबली वाला।

चलोरी गोरी चल के ना गगरिया जरा होले चलोरी, होले चलोरी गोरिया धीरे चलोरी।

तोहरी बाली उमरिया लगा सोल माता, अभी है तोहरी बाली उमरिया लगा सोल माता।

और शामिल लीजिए, सुनिए जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाजों में नासिर फराज का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म है काबिल।

सुन रहे थे आशिकी टू फिल्म का नगमा अंकित तिवारी की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा को सुनिए। फिल्म है ट्रैफिक सिग्नल, मौसीकार संदेश शंदालिया।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का नगमा, नगमा निगार थे सत भोपाली, मौसीकार राम लक्ष्मण। और अब सुनिए शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म का ये नगमा।
1: हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: सख्त एहतजाज दर्ज किया है जिसमें तीन भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबलो पर अमरीकी हमले में अमले के तीन भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्देअमल की वजह बने हैं। उम्र खारजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लाइकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लाइकी फ्रीडम बहरी जहाज के ओहदेदार से बात की है जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। एमईए के हकायक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह के झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट के खिलाफ होशियार रहें। इन खबरों के बावजूद कि ईरान और अमरीका किसी समझौते पर पहुंचने के करीब हैं, ईरान ने कहा है कि वो महीनों से जारी तनाजे को खत्म करने के लिए उस वक्त तक किसी हतमी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा जब तक कि उसकी अहम शरायत पूरी नहीं की जाती। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे को बताया कि मुफाहमत के मुसवदे को कतई शक्ल दी जा चुकी है और आइंदा दिनों में उस पर डिजिटली दस्तखत किए जा सकते हैं। अलबत्ते ईरान के हुकाम का कहना है कि तेहरान मुस्तकिल समझौते की उस वक्त तक तौसीक नहीं करेगा जब तक कि अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं कर देता और ईरान के अरबों डॉलर के मुंजमिद असासों को जारी नहीं करता। फिनलैंड की वजीर खारजा एलिना वाल्टोनेन ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने की हिमायत की है और ये भी कहा है कि भारत मगरबी मुल्कों की तेल की कीमतों से मुतालिक जाब्तों पर अमल करता रहा है। फिनलैंड में एक मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने ये बात कही। मीटिंग में भारत के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। फिनलैंड की वजीर खारजा एलिना ने कहा कि तेल की कीमतों पर एक हद इसलिए लगाई गई थी कि रूस के मुनाफे को महदूद करने के साथ साथ तेल की फराहमी भी जारी रहे और भारत ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला में मुबतला अफराद की तादाद बढ़कर 689 होने की तस्दीक हुई है जिनमें 139 अमवात भी शामिल हैं। सेहत से वाबस्ता अहलकारों के मुताबिक इतुरी सूबे से 17 नए केसों और मजीद 5 अमवात की तस्दीक हुई है। हुकाम ने दवाओं की फराहमी में किल्लत, इलाज मुआलजे की महदूद सहूलियात और 2,15,00,000 डॉलर की रकम की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। आज सुबह आसाम में फिजाइया के जोरहाट स्टेशन पर भारतीय फिजाइया का एक AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फिजाइया ने बताया है कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए कुछ छानबीन की जा रही है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम मोदी फ्रांस में इवियान में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बर्दार जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है और भारत की फिजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फिजाइया के जोहार स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामिन अभी तक आप हमारी नशरियात आकाशवाणी को उर्दू सर्विस से समाप्त कर रहे थे। मीडियम में पर आकाशवाणी करगिल है। अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मौजूदा मीटर्स के अलावा मीडियम में 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ONR पर हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।

0: नेपाल बो न्यों कनाला नेपाल न्यों कन गुनी सीजो री तेगा पसी नो कभी सी कन चीसी बते ना उसी नो अन में नाम लोशोल है सब सी नो कजो सी
1: ताताक्सा है से पुला थना हाँ सीजो कनाम बो मनी जाले इंचिन दुलो अन में बो मनी जाले किसो से ताक्सा नेपाल तो गुन मनी जाले दिन में तुम चल कनाम बने जाले दे तुम मेरा ले ते जे ने को मनी कोना आला आला ला सी आला ला पे चकने को लोची की कर री छचे तिजु मनी ओम दु भाई वो हां मने जिंता छ सी बिची ति चिंडल ता दे मने उनमे सिंडल दे दे चिक प्यांगवा दा ता चिक प्यांगवा पिसि ना सी नियो न बन्या चिक प्यांगवा दा चिक प्यांगवा दा बे तो मन डल मसन डे लुइ दो मने उनमे सी पच्ची जिन्ना
0: कासा तनी ता ता स के ना अहो एगा जोन के गुना लले जे जोन के गुने के नंगन में ई सीजो लोकन या मने लोकन दोत पाच थोंग दो गेता यंग यंग ती नंगन में सीजो गुनी
1: ตอมมะนิงันเมกกมิสตรีตาซากอสิปาสิกมะนิตามะนิติงจูมะนิยองเจมิดุกุเลเจยองเจมิดุเซนตามะนิอาวิกดันติเรนาทูเนยันตันจิซิเลเจยันตันบางโกมาตันดินดาเรซานะเมโซติจูมุนมาโซเซตะโกเยมิสตรีเจอสิปาสิกันเจซอมเบเนบาลามะนิยูรินจินาริงโมโกเซนดุงยานาริงโมเมเนมะนิจิจินางโกตันจิมิดุนามะนิริงโมโกเซนดุ ดันดิริทูกุนมะนีนาริมุยองดุมิดุมะนีจิจิจิตุกะเลฮาจิจิจอนามะนีตาซามะนีซัปตุนัตตุลยานดันติรินบัตมะงะตะนีซุซุนจอเตอะนีมะพานเซนติจุซัมกันจิมะนีทูจิมะนียองมิดุกยามะนาริมุโกเซนดุกซิโพนจิจอนานาริมุโกเซนดุกซิปาสิกันจิยอนาตากะซิเปคาโตจิลาจุงวะตุเตลุสเวตาตาติจุซอมซันมะนีดะกันมะนีมะนีลอกซุนตอกันมะฮอนโมมะนีมิดุก
0: रा चांजों दे जबला कुर्द क्यों दे तिजु सी दे मन शंटे शंटे चलूं यहाँ तो उन तातासा मने दादीरी नाला को मने सिमने पाइवी ते तो ना बन सर को मने तिजम सी मने जाले जी मिलो यहाँ मान तो उन मन उनमें मी कोना बम मने अच्छी चिंदो यहाँ ते उनमें मी जो है लम लूसर कोना बम मने अच्छी चिंदो इंचे चीज चोना ता को ले मने सिपासी ना चीज चोना मना तो मंग उनमें मिजन और दे सिपासी एंड चीज समा मने जाले इंचे तो गया कसा तेने आजंग तंग ता आहं अनमे लाम नुशोल गुनी तो मां देबा खाचन नी न वाला ले तेने तो सोंबे ता अंगता लाम नुशोल से ना आहे जहारे सीजो आहं लादा दे ना सीजो को पाला ले ते सीजो नंग लेके ना ता सीजो पाबू गुनी तांचुल गुन ना चितों यां मिंग चो या चितों यो नले मता टीम चो
1: तो इनो नले मखाचे नतो यों चे याना तासा पासिंग नका नी सुम यों चे याना चुबुल्ला अठरन छे पाजर चिकी यों चे याना सिपे ट्वी तांच मरिंगमो पाबू तांच चन एक सत चौदं बाजे ची यों चन भारं छे पाजे ची यों चे याना ताते नांला योनो सत चौदं बाजे याना फिलो फिलो फिलो सिपे का ते सत चौदं बताएं बो मनी जले नुलनो या ते तासा जूंग बोला ता को हाँ सिपे पर पर ले आ जूंग लता जला नगुई नगुई सिपा ता जला छे बारंग बताना हो तो ठीक जाना या ते टूटू गुला अठारंग छे पजर हम बो ते कुना कुना हो तो तंगना टूटू गुला हो तो तंगना मने जूंगा को मने जत मचे जूंग ना बो तो सच चौदां बजां अठारंग छे पन्या फेल फेल दे ताबे चिपो आजू चिपी ताबे सन मा जले देचेंगा
0: तांगतां जीतां दां हियां तां जे छोरबा लाले तो जीतां दां हियां तां जे नि हियां तो उन कजु छि जे
1: तो गुन्याना नो जीतां जरेम बो सच चोदां बा जाना इजुल रिमवा तानो न्याना जीतां जरे तो से चांगतां जरेम बो न्याना पाबु चि चि पिजुल रिमवा ता कनं रिमा रिमा तां चरबेसने को तो ल चांगतां जेनो तो नगुय हा सिचा सिचाला मने ननिगुन माशे तां दो या ता तासां देयां को मिगुन मने सनम जन जरा ता को ची जरा छुकोरे जरा ची जरा तीजु सम बसाने तो शांडम जरा बतांग कने हन में मने यम दु ननु मन मा सो ते शांडम जरा बता दे हम यार तो पबु शां सी बता के न या परला परला
0: कासा तिनी यांग सोरजे ला जंग ले यांग तंगा ता सी पा सी चे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम

0: शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the two countries. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
3: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic, and that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
2: It is precisely the spirit of research, innovation and people-to-people connect that Bharat Innovates brings to Nice tomorrow, and with it, the promise of a partnership that only grows stronger. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कह के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से कहो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करो, 30 दिनों में जवाब या कोई हल ना निकले तो CMS पोर्टल पर शिकायत करो। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चलें। लो आ गया नया किट बैग। RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रंगी बिजनेस उन्लास के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोलन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्तंचाइन कस्टमर उन सपिले पीस कप्स मांगमो धरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का युग से नंग बांग चाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242।
4: सुनो ना,
2: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा।

0: कुछ ना कुछ उदे लशियो ते मिनियों चश्मिंदे ध्यान चुगा उदे मेलिनिन पुस्ना नेरी रुगवा कलर तांसे नाती शाओला स्किन उला कलर तांसे ना नेरां दिनी में कनों खानी खतरनाक अल्टा वाले ड्रेस जर कनों ने कना बचाई बसे शक जस इंचुक नीदी इंसानों नां मेलिनिन पुका म्यूत पना स्किन पुकार पुयूत पना खुआ ज्यादा निम्यां चाहिए चश्मिन चुक यानी स्किन पर बहुत ज़्यादा नुकसान तंचस इंसु बहुत ज़्यादा नुकसान तंचंगानी एरी स्किन पर बहुत ज़्यादा मर्फ चचस इन रेशियस चचस इन दूसरा हट क्योंकि मेलेनिन मित बना नी दीरी जेनेटिक्स सी का जिसमें यूना उधे इलाज हों जिसमें जैसे कि बहुत सारे ऐसे जैसे कि चिकन पॉक्स रे बहुत सारे डिजीज़ जो जैसे वायरस कर चकने बैक्टीरिया करने चकने जो उन गता सुन सुन फैलाई चेतां लेकिन एल्बिनिज्म उधे सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स चेकिंग जो सुन सुन का बेर चेमें इसलिए गते दी वोट सुन मद्दे नजर यहाँ शख्स मनी एरेज हर इंसान लंगने एरी मोशरियानो अच्छे से ट्रीट बचा कौन इंसान समझा और मैंने ये थीम पौधे इनकी मत खुआ हर्ड मीठा चुचा स्नेहा में फुक चुचा खुआ थेशस में बचा इनशाला निदिस पेरे खाना यंता बुली अल्बिनिज्म में बरंग समाज यूं से दुख दुख
1: दर सुपर इंतजार बनी करना टॉक चिंग न्यूटपिन इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे स्कोरला कसनिक प्रोग्रामी लजुक पेका समस्त मजद ऐसा शमी मिसका तेनुक
2: Yeah, man.

0: अच्छा सर, आकाशवाणी करगिल का नजर न्यूज।
1: रंगी बिजनेस उन लस्के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलन उन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सपिले पीस कप्स मांगमो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हाटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014241 का।

0: منور بدایون کلام پہ انتسلاب انچت پین قاری وحید ظفر قاسم شتنا مچا زاکاشوانی کرگی لکن زرینیت وقص پو بجردن نمیننگیشن سچنک آکاشوانی سری نگر کنا اردین خبرنا تفسراری لے بیت
1: भी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: स्टार्टअप के सेक्टर में एक चोटी का मुल्क बन गया है और युवा शक्ति अपनी सलाहियत के बल पर तारीख रकम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित बरादरी से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में सनती तालीमी और सकाफती इदारे कायम करें ताकि उनकी बेमिसाल सकाफत और तारीख महफूज हो सके। SKICC श्रीनगर में ग्लोबल कश्मीरी पंडित कनक्लेव से खिताब करते हुए एलजी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि जो लोग यहां से बेदखल किए गए थे उनकी वापसी न सिर्फ खुशायंद है बल्कि ये एक बड़ी फतह भी है।
1: कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपनी उन्नति के माध्यम से दुनिया को स्मरण दिलाया कि दमन और नरसंहार के विरुद्ध दृढ़ता, साहस और संकल्प ये सबसे बड़े हथियार होते हैं। आज जब पूरा विश्व और विशेष रूप से देश आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाता है तब वो आपकी प्रतिभा की मान्यता, धैर्य की मान्यता और उस आत्मा की मान्यता को नमन करता है जिसने झुकने से इनकार कर दिया था। आपकी वापसी इस बात का भी प्रतिबिंब है कि एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ है। इस नए जम्मू कश्मीर की शक्ति आपके संकल्प का प्रतिबिंब है। नए जम्मू कश्मीर की आशा आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडित समुदाय के नरसंहार, दर्द और विस्थापन का साक्षी था उसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्माण के केंद्र बिंदु में स्थापित कर दिया है।
0: दरियासना कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज मालविया के नजरिए की मुनासिबत से विकसित भारत और जम्मू कश्मीर के मौजू पर एक नशस्त मुनक्कद हुई जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की खसूसी नुमाइंदा कौशिकी कश्यप ने खबर दी है कि एलजी ने अपनी तकरीर में कौम और मुल्क की तामीर में मदन मोहन मालवीय के रोल को उजागर किया।
1: और उन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य और संसाधन भी प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तीनों धाराओं के सामंजस्य पर विशेष बल दिया गया है। मेरा विश्वास है कि संस्कृति, संस्कार और आधुनिक विज्ञान का यही समन्वय विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत या विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सकता है।
0: दरियासना इस मौके पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वैंगमय का ई एडिशन और इसका रीडर्स गाइड लॉन्च किया गया। वजीर सेहत सकीना इतू ने आज सुबह श्रीनगर में SMHS अस्पताल का दौरा करके वहां गुजश्ता रोज सुरसियार बड़गाम में स्कूल बस को पेश आए हादसे में जख्मी हुए दो स्कूली बच्चों की खैर आफियत दरियाफ्त की। उन्होंने डॉक्टरों से तलकीन की कि वो जख्मी बच्चियों को इलाज मुआलजे की हर मुमकिन सहूलियात दस्तियाब रखें। इस दौरान वजीर मौसूफा ने आज कुलगाम में कायम एक प्राइवेट स्कूल की ग्रेजुएशन डे तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि सरकार तालीमी मंजरनामे को मजीद बेहतर बनाने और इस सेक्टर के बुनियादी ढांचे को मुस्तकम बनाने की वादाबंद है। तकरीब में कुलगाम के डेप्यूटी कमिश्नर शहजाद आलम भी मौजूद थे। इसी दौरान वजीर मौसूफा ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की तिब्बी सहूलत फराहम करने की वादाबंद है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक सकीना इतू ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जितने भी अरेंजमेंट्स वहाँ जरूरत होते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको प्रायोरिटी में करता है। इस साल भी ऑलरेडी मैंने एक हफ्ते पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग ली है जिसमें मैंने पूरा उनको कहा है कि क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो मेडिसिन रखने की ज़रूरत हो, ऑक्सीजन लेवल पे क्या क्या नीड है, वो सारी जो है ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। जो हमारे वहाँ से यात्री आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। वो हमारे मेहमान आते हैं और हमारी कोशिश है कि उनके लिए हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल रहे।
0: वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज नट्टीपोरा जाकर मरहूम JKAS ऑफिसर मोहम्मद यूनुस मीर के अहल खाना के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। नौजवान अफसर के इंतकाल पर अफसोस जाहिर करते हुए मुशीर मौसूफ ने उनकी समाजी खदमत के लिए उन्हें खराज पेश किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सईदना हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में आज वादी की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों पर दीनी इज्तिमात मुनक्कद हुए।

0: सरकार पर लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से जबरवन पार्क श्रीनगर में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का एहतमाम पार्टी के युवा मोर्चे ने किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज माहौर तहसील के न्यूज इलाके में हजरत बाबा सैयद गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देकर सालाना उर्स में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सागर कल्चरल फोरम के एहतमाम से आज शीरी बारामूला में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर फोरम के सदर बशीर जोगियारी के शहरी मजमू मुकद्दर पनपन की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। कॉन्फ्रेंस में कई अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। दरी असना लिटरेरी फोरम बांडीपोरा के एहतमाम से आज योम रशीद नाजगी के सिलसिले में अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने मरहूम रशीद नाजगी की अदबी और सामाजिक खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरबे आफ्ताब शाम 7:44 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
1: आदाब। आज का तबसिरा लेकर मैं सोफी यूसुफ। मशरिकी वस्ता तवील अरसे से आलमी सियासत तवानाई की मंडियों और बैन अलाक्वामी तिजारत का एक अहम मरकज रहा है। हालिया महीनों में इस खत्ते में पैदा होने वाली कशीदगी फौजी कार्रवाइयों और सियासी अदम इस्तेकाम ने न सिर्फ इलाकाई अमन को मुतासिर किया है बल्कि आलमी मईशत के लिए भी नए खदशात पैदा कर दिए हैं। दुनिया की बड़ी मईशतें हों या तरक्की पजीर ममालिक तकरीबन सभी किसी न किसी शक्ल में इस सूरत हाल के असरात महसूस कर रहे हैं। मशरिकी वस्ता की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के तेल और गैस के जखायर का बड़ा हिस्सा इसी खत्ते में मौजूद है। जब भी यहाँ कशीदगी में इजाफा होता है तो सबसे पहले आलमी तवानाई की मंडियां मुतासिर होती हैं। तेल की कीमतों में मामूली इजाफा भी ट्रांसपोर्ट सनत ज़राअत और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर बराए रास्त असर डालता है। यही वजह है कि खत्ते में जारी बेयकीनी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में महंगाई के खदशात को बढ़ा दिया है। आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा मशरिकी वस्ता के बहरी रास्तों से गुजरता है। अगर इन रास्तों में रुकावट पैदा हो या सलामती के मसाइल बढ़ जाएं तो सामान की तरसील महंगी हो जाती है। शिपिंग अखराजात में इजाफे का असर बिलाखिर सारिफिन तक पहुंचता है। खुराक ईंधन अद्वियात और सनती खाम माल की कीमतें बढ़ने लगती हैं जिसके नतीजे में आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। जनूबी एशिया के ममालिक भी इस सूरत हाल से महफूज नहीं है। भारत बांग्लादेश श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक तवानाई की दरामदाद पर इनसार करते हैं इसलिए तेल की कीमतों में इजाफा इनकी मईशतों पर इजाफी दबाव डालता है। ज़र मुबादला के जखायर दरामदी बिल और मालियाती खसारे जैसे मसाइल मजीद पीचीदा हो जाते हैं। भारत भी इस बहरान के असरात से अलग नहीं है। दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में शुमार होने के बावजूद भारत अपनी तवानाई की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा बैरूनी मुल्क से हासिल करता है। मशरिकी वस्ता में कशीदगी बढ़ने से खाम तेल की कीमतों में इजाफे का बराए रास्त असर भारतीय मईशत पर पड़ता है। ईंधन महंगा होने से नकलो हमल के अखराजात बढ़ते हैं जिसका असर अशियाई खुर्दनूश और दीगर जरूरी सामान की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके अलावा खलीजी ममालिक में काम करने वाले लाखों भारतीय शहरी भी खत्ते के इस्तेकाम से बराए रास्त वाबस्ता हैं लिहाजा वहां पैदा होने वाली बेचैनी भारत के समाजी और माशी मफादात को भी मुतासिर कर सकती है। भारत ने हमेशा मशरिकी वस्ता में अमन और इस्तेकाम की हिमायत की है। नई दिल्ली मुख्तलिफ सफारती जराय से कशीदगी में कमी मुजाकरात के फरोग और तनाजात के पुरअमन हल पर जोर देता आ रहा है। भारत का मौकिफ यह है कि जंग किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं बल्कि बातचीत और सफार कारी ही पायदार अमन की बुनियाद बन सकती है। यही वजह है कि भारत खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अमन की कोशिशों की हिमायत कर रहा है। माहरीन इक्तिसादियात का कहना है कि अगर मशरिकी वस्ता में कशीदगी तवील अरसे तक बरकरार रही तो महंगाई का दबाव मजीद बढ़ सकता है। इससे न सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि तरक्की याफ्ता मईशत

क्रांति फिल्म से आप गीत समाप्त कर रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। अगला गीत हमने खून भरी मांग फिल्म से लिया है, जिसके लिए नितिन मुकेश का साथ दिया है साधना सरगम और साथियों ने। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार राजेश रोशन।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सलामी फिल्म से गीत सुन रहे थे। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। अगला गीत पेश है कुछ कुछ होता है फिल्म से, जिसके लिए अलका याग्निक का साथ दिया है उदित नारायण ने। समीर किल के इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: कुछ कुछ होता है फिल्म से आप गीत सुन रहे थे। आवाजें थीं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने। फौजी भाई आपका प्रोग्राम जारी है। अगला गीत हम एक छोटे से वक्फे के बाद पेश करेंगे।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हजुरबाजे ये थे जोली मुखर्जी और अनुराधा पौडवाल। फिल्म का नाम था साथी। प्रोग्राम के आखिर में पेश है कसूर फिल्म से गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम शवन।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: सतर्कता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेटॉन सीरी नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

0: सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के

0: recently inaugurated Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in Wayne Maud first ODI of 3-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ़ और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुहिदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदन में अख़वा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम डीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर में अफवाह के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई जहानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कभी इम्कान है कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रिटिसलावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुम नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाय मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तहकम करने में भी मदद कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है।

मिरिमेको दु आकाशवाणी कारगिल वक्सपो सानी बजार शिव संसद दयानम्बो आकाशवाणी कारगिल कना दिनी प्रचुपायत पे प्रोग्राम में वक्सपो छम सदारन हस्केंगे भी बजा चुंगिस का अंत न थुगे दे तखपन मचे इजाजत लने ये जो खदान और सखमान फगने जय हिंद